प्रबल चांड को साको भारा खौ खट अपहरानद गाए अष्टमाल का सक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सुत उठ है तान कलोल गायन तार मिला वही तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहिरी ले पहार जा संगलाई पांचो वार जा सुरमानंद

अवतार चतुर चक्रवर्ती चतुर्चक्रभुते स्वयं सुमं समदास युगते युगानं प्रणासी दयालन स्वरूपे सदा संगेय वंदन विभूते देख देख फतेह नसरत बेद रंगे आपतज आज नान गुरु गोविंद सिंह जी श्री अकाल पुरुष सहाय दरबार मित्र दरबारा सत्खंड वंदन अंगारा लक्ष्मी कड़ी तुम्हारे दरबारा सब देवते नमस्कार दोहरा।

रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा और विष्णु के ते वेद और पुराण के ते सिमरत समूहन का होए होए बिते है। मोन दी मदार के ते अश्विनी कुमार के ते अंसा अवतार के ते काल बस पे है। पीर उप कंबर के ते गने ना परते भूमि ही ते होएगा फिर भूमि ही मिले है। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्री ही की छाया कई कोस लो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। मान से मही प्यो दलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान पुज दंड को करत है। दारा से दिलीसर दुर्योधन से मान तारी भोग भोग भूम अंत भूम मैं मिलत है। सिज दे करे अनेक तोप जी कपट पेस पोस्ती अनेकता निवावत है। शीस कौ कहा पयो मल जप काटत अनेक डंड सोता ना डंडाओ ते अष्टांग अथ तीस कौ कहा पयो गुरु की जो पटारियो रहो उर्दमुख मन ते ना मूड नहरायो आदि ईस कौ कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश कौ। शीस पट कत जाके कान मैं खजूरा तसा मूड छट कत मित्र पुत्र हूं के सुख सौ आग को चरैया बल फूल को पछैया सदा बन को प्रमैया और दूसरो न बोक सौ कहा पयो भेट जो कसत शीस ब्रिछन सौ माटी को पछैया बोल पूछ ली जा जोक सौ कामना अधीन काम क्रोध मैं प्रवीन एक भावना विहीन कैसे पेटे परलोक सौ। नाचे हुई करत मोर दादर करत सोर सदा कन कोर कन करी हुई करत है। एक पाए डाडे सदा बन मैं रह।

स्वांगी कहूँ जोगिया बैरागी बन कबहू संन्यास भेस बन कै दिखावई कहूँ पौन हारी कहूँ बैठे लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सौ अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पै लगावे बारी कहूँ डंड धारी होई गए लोगन परमावई कामना अधीन परयो नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई पंच बार गीदर पुकारे परे शीत काल कुंचर अगदहा अनेक

ताप के सहित जो पपाई है अतापनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के किए तुजो पपाई अजाप देव पूदना सदीव तू ही उचरत है। नव के उठे तुजो पप नारायण पाई अत अनल आकाश पंछी डोल बो करत है। आग मजर तिगत रांड की परत कर पताल के बासी क्यों भुजंगना तरत है।

इमाम साफी मानस की जात सबा एक पहचान बो करता करीम सोई राजक रहीम ओई दूसरो ना भेद कोई भूल ब्रह्म मान बो एक ही किसेव सब ही को गुरुदेव एक एक ही स्वरूप सब एक जोत जान बो देहरा मसीत सोई पूजायो निवाज ओई मान सब एक पयन एक को भ्रमाओ है देवताया देव जाच गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देसन के पी

नेहं न गेहं न शोकं न साकं परेयं पवित्रं पुनीतं अताकं न जातं न पातं न मित्रं न मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मं न परमं न शर्मं न साकी न भर्मं न चर्मं न कर्मं न बाकी न सत्रं न मित्रं न पुत्रं न स्वरूपे नमो आदरूपे नमो आदरूपे। कहूं कंज के मंज के परम भूले कहूं रंग के राज के धर्म अलूले कहूं देश के भेष के धर्म तामे कहूं राज के साज के बाज तामे कहूं अक्षर के पजर के सिद्ध साधे कहूं सिद्ध के बुद्ध के बृदला दे कहूं अंग के रंग के संग देखे कहूं जंग के रंग पेखे कहूं धर्म के कर्म के हरम जाने कहूं धर्म के कर्म के परम माने कहूं चार चेष्टा कहूं चित्र रूपं कहूं परम प्रज्ञा कहूं सर्व भूपं कहूं नेह गृहं कहूं देह दुखं कहूं औघ दी रोग के शोक सोखं कहूं

भुगत मैं परम भुगतं। कहूं देव कन्या कहूं दानवी हो, कहूं जज विद्या तरे मानवी हो, कहूं राजसी हो कहूं राज कन्या, कहूं सृष्टि की पृष्ठ की रिष्ट पुण्या, कहूं वेद विद्या कहूं व्योम बानी, कहूं कोक की काव कथा कहानी, कहूं अद्र सारंग कहूं पत्र रूपं, कहूं मद्र बानी कहूं छुद्र स्वरूपं, कहूं वेद विद्या कहूं काव रूपं, कहूं चेष्टाचार चित्रंग स्वरूपं, कहूं परम पुराण को पार पावा, कहूं बैठ कुरान के गीत गावा, कहूं शुद्ध सेखं कहूं ब्रह्म धर्मं, कहूं वृद्ध अवस्था कहूं बाल कर्मं, कहूं ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं, कहूं नेह देहं कहूं त्याग गृहं, कहूं योग भोगं कहूं रोग रागं, कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं, कहूं राज साजं कहूं राज रीतं, कहूं पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं, कहूं अरबी तोर की पारसी हो, कहूं पहलवी पस्तवी संस्कृति हो, कहूं देश पाखिया कहूं देव बानी, कहूं राज विद्या कहूं राजधानी, कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारंग, कहूं जंत्र रीतं कहूं शस्त्र तारंग, कहूं पूजा कहूं देव अर्चा, कहूं पिंगुलाचा।

स्वप्नाग्रस्तं समस्तं स्वरूपे नमस्तं नमस्तं त्वस्तं अपुते त्वप्रसाद पाथड़ी छंद अव्यगत तेज अनुभव प्रकाश अक्षय स्वरूप द्वय अनास अनतुट तेज अनखट भंडार दाता दुरंत सर्वंग प्रकार अनुभूत तेज अनछिज गाद करता सिद्धि हरता सनात आसन अडोल अनुभूत कर्म दाता दयाल अनुभूत धर्म जय सत्र मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय कर्म भर्म नहीं धर्म ध्यान जय नेह गे नहीं ब्योत बान जय जात पात नहीं सत्र मित्र जय नेह गे नहीं चिन्ह चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात

रख रुखं, जय ताप न साप न सोख सुखं, जय रोग न सोख न भोग भोयं, जय खेत न भेद न छेद छयं, जय जात न पात न मात पितं, जय रचियं छत्री छत्र छितं, जय राग न रेख न रोग पणं, जय द्वैख न दाग न दोख गणं, जय अंड ते ब्रह्मंड रचियो, दस चार करी नव खंड सचियो, रज तामस तेज तेज कियो, अनुभव पदया प्रचंड लियो, श्री सेंद्रो बिंध नगिंद नगंग, श्री जच गंधर्व अनंत भुजंग, रच देव देव देव अभेव नरंग, नरपाल नरपाल कराल त्रगंग, कई कीट पतंग भुजंग नरंग, रज अंडज चेतज उत्त भुजंग, किए देव य देव सराध पतंग, अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग, प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग, जय तात न मात न प्रहात सुतंग, जय रोग न सोग न भोग पुअंग, जय जंपह किन्नर जच जुअंग, नर नार नपुंसक जाय किए, गण किन्नर जच भुजंग दिए, गज पाजर तादिक पाद गणंग, जय भव भूत भविक भवान तुअंग, जय अंडज जेरज सेत रचन, जय अंडज सेतज जेर रजंग, रज भूम आकाश पताल जलंग, रज पावक पौन प्रचंड बली, बन जास की ओफन फूल कली, भू अमीर आकाश निवास चितंग, रच रोज एकादश चंद्र प्रतंग, दुत चंद तनि सह दीप तई, जय पावक पौन प्रचंड मई, जय खंड अखंड प्रचंड किए, जय छत्र उपाय छपाए दिए, जय लोक चतुर्दश चार रचे, नर गंधर्व देव अदेव सचे, अनधूत अभूत अछूत मतंग, अनगाद अप्याद अनाद गतंग, अनखेद अभेद अछेद नरंग, जय चार चतुर्दश चक्र फिरंग, जय राग ना रंग ना रेख रुगंग, जय सोग ना भोग ना भो जोग जुगंग, भो भंजन गंजन याद सिरंग, जय बंदत देव अदेव नरंग, गण किन्नर जच भुजंग रचे, मन मानक मोती लाल सुचे, अन पांच प्रभान गंग।

न कर्म न धर्म अजन्म अपीघ न तात न मात अख्याल अखंड अख्याल अखंड रूप है अछेद है अपीत है न रंक है न पूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है अपंज है।

दुष्ट हर्ता पुष्ट करता सृष्ट हर्ता काम, दुष्ट हरना सृष्ट करना दयाल लाल गोबिंद, मित्र पालक सत्र कालक दीन दयाल मुकंद, अगौ डंडन दुष्ट खंडन काल हूं के काल, दुष्ट हरणं पुष्ट करणं सर्व के प्रतपाल, सर्व करता सर्व हरता सर्व के अनकाम, सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम, सर्व पुगता सर्व जुगता सर्व कर्म प्रवीण, सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन, सर्व सिमृतन सर्व शास्त्रन सर्व वेद विचार, दुष्ट हरता विश्व भरता।

प्रसाद दीर्घ त्रिभंगी छंद दुर्जन दल दंडन असुर बिहंडन दुष्ट निकंदन आदि प्रति चछुरासुर मारन पदत उदारन नरक निवारण कूड़ गति अच्छे अखंडे तेज प्रचंड खंड उड़ंदे अलख मते जय जय हो सी महकासुर मर्दन राम कपरदन छत्र छिते आसुरी बिहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उदंडन रूप अति चंडासुर चंडन मुंड बिहंडन धूम्र विधुंसन महक मथे दानव प्रहारन नरक निवारण अधम उधारन उर्ध अधे जय जय हो सी महकासुर मर्दन राम कपरदन आदि बिरते डावरू डवंक बबर बवंक पूजा फरंक तेज परंग

दामनी प्रहासन सो छब निवासन सृष्ट प्रकाशन गूढ़ गति रगतासुर आजन युद्ध प्रमाजन निर्दय नराजन धर्म वृति श्रोणंत अजंती अनल।

सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन पृष्ठ विनाशन मृत मथे कावरु कुमारे अधम उधारे नरक निवारे आद कथे कंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंघारोहण बितल तले जय जय हो सीमा सब ठौर निवासन पाए पता।

चतुरासुर मारण नरक निवारण पतित उदाहरण एक भटे पापान विहंडन दुष्ट प्रचंडन खंड अखंडन काल कटे चंद्रानन चार नरक निवार पतित उधारे मुंड मथे जय जय होसी महकासुर मर्दन धूम प्रधुंसन आदि कथे रगतासुर मर्दन चंड चक्रदन दान वर्दन बिड़ाल बधे सरधार विबरखण दुर्जन दरखण अतुल अमरखण धर्म धुजे धूम राज विदुंसन श्रोण चुनसन सोम

जल तल प्रभाव सर्वत्र ना साथ। जय जात पात नहीं भेद परम, जय रंग रूप नहीं एक धर्म। जय सत्र मित्र दो एक सार, छह स्वरूप विचल अपार। जानी ना जाए जय रूप रेख, कह बास दास कह कौन पेख। कह नाम दास है कवन जा, जय सत्र मित्र नहीं पुत्र प्रात। करुणा निधान कारण स्वरूप, जय चक्र चहन नहीं रंग रूप। जय खेद भेद नहीं कर्म काल, सब जीव जंत की करत पाल। उर्दंग बिरहत सिद्धंग स्वरूप, उद्धंग पाल युद्धंग अनूप। जय रूप रेग नहीं रंग राग, जय अनछिज तेज अनपिज अदाग। जल थल महीप बन तन दुरंत, जय नेत नेत ने

पूर्ण प्रभा की सो छटा के अनुमानिया है। तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र का के जानिया है। तेज हूँ को तर है के राजसी को सार है के शुद्धता को कार है के सिद्धता की सार है। कामना की खान है के साधना की शान है वृक्तता की पान है के बुद्ध को उदार है। सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूँ को रूप है कुमत को प्रहार है। दीनन को दाता है कनीमन को कारक है साधन को रक्षक है गुणन को पहार है। सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के कृत को

काल हूं के काल है के सतरण के साल है के मित्रण को भोगत है के वृद्धता की पासी है। योग हूं को जंत्र है के तेज हूं को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है। रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को पास है के बुद्ध हूं को घर है। देवन को देव है निरंजन अपेव है अदेवन को देव है के शुद्धता को सर है। ज्ञान को बचैया ईमान को दिवैया है। जम जाल को कटैया है के कामना को कर है। तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है। महिपन को मंड है के स्त्री है ना नर है। विश्व को पर्ण है के अपता को हरण है के सुख को कर्ण है के तेज को प्रकाश है। पाइया न पार पारावार हूं को पार जा को कीजत विचार सो विचार को निवास है। हिंगला हिमालय गावे हबसी हलबी जावे पूर्वी।

जाए, ना ओह मरै न होवै सोग, दिंदा रहै न चूकै भोग। गुण एहो होर नाहीं कोय, ना को होआ ना को होए। जे वड्याप ते वड तेरी दात, जिंदन कर कै कीती रात। खसम वसारह ते कम जात, नानक नावै बाज सुनात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जन सदगुर सतपुरखा। बिनौ करौ गुर पास, हम कीरे किरम सतगुर शरणा।

काहे रे मंचत वह उदम जा आहिर हर जियो परिया सैल पत्थर मह जंत उपाय ताका रजक आगे कर धरिया मेरे माधव जी सत्संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सुके काष्ट हरिया रहा।

जवन काल सब जगत बनायो, देव दायत जच्छन उपजायो, आद अंत एक अवतार, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी, सिवकण को सिवगुण सुख दियो, सतरण को पल मुह पद कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चींटी ते कुंचरिय स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने, जावुद करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देह अपारा, जब आ करख करत हूँ कब हूँ, तुम मैं मिलत दे धर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ट सब धारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब

छीनत नह भव। आप आपनी बुध है जेती, बरंत भिन भिन तुहे तेती। तुमरा लखान जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जे रज से तज कीनी, उतबुज खान बहर रच दीनी। कहूं फूल राजा है बैठा, कहूं समट भयो संकर कैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो। दुष्ट जिते उठवत तुत पाता, सकल मलेच्छ करो रणघाता। जे अस ध्वज तौ शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत होए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार धिए हैं, ताके काल निकट नह है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्टन जाए निहर हो, ताके ताप तनक महर हो। रिद्ध सिद्ध घर मु सब होई, दुष्ट छा छय सकै न कोई। एक बार जिंत मैं संभारा, काल फांस ते ताही उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारत दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत

पहुँचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सब राता, किल्बक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता। श्री अवधुज भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बाशत

हमरे सब काज, तुम हो सब राजन के राजा, पे आप गरीब नवाजा। दास जान कर कृपा करो, मोय हार परा मैं आन द्वार तोहे, अपना जान कर।

एक न मानियो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जानियो। श्रीयस पान कृपा तुम रिकार मैं ना कहो सब।

चाहे, जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाहे। कल मैं एहो पुन गुण गोबिंद गाहे, सब सैनो कृपाल संभाले साहे साहे। बिरथा

0: कृपान कल की दर्शन में दान श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज
1: बोले।

पहला मुसलमाना सबसे पकड़ विचार बंदे से जे पहुंच बंदी वेखण को दीदा हिंदू साला ही साला हम दर्शन रूप पार तीर्थ नावे चा पूजा करो वास में का जोगी सुनते आऊं जी तेलक नाम करता सुख मुर्त नाम निजन का कर सतिया मन संतो को जे देने के विचार दे दे मंगे ससा गुणा सब करे संसार चोरा जा रहा थे कुण्यारा खराब आवे का एक खुंदा खा चले था दिन अबे काई का जल थल जिया पुनी आलो आकार आकार ओ जा किस्तु

0: अल मलक आए सुरछाई पाई मूर्ख अंधा पद गवाई बिन ना वैग चताए ना पाई रह बिबाणी मणि मसाणी अंध न जाने फिर बचतानी सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए
1: नानक कृपा सो पाए आसन दी सीती नहीं

0: तन फिटे फेड़ करेन मन जुठे चुनी परे
1: कहु नानक सच त्याई सच होवे ता सच पाई पौड़ी।